इंडिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

0: ਕੈਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
1: सिर्फ फिल्मी नहीं, यह है पंजाब की सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
0: जो एक जोकर तख्त पे बैठता है तो वो राजा नहीं बनता, वो पूरे राज में सर्कस मना लेता है।
1: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी और कई साथी कलाकार 7 अगस्त तो नेड़ले सिनेमा घरों में।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: शेरनेक्सस।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am the advisor.

0: ਕੈਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ।
1: सिर्फ फिल्म ही नहीं, यह है पंजाब की सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
0: जो एक जोकर तख्त पे बैठा तो वो राजा नहीं बनता, वो पूरे राज में सर्कस मना लेता है।
1: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते और कई साथी कलाकार। 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच। हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: लैंग्वेज इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच
4: हां जी स्क्रीन ग्रोवर स्क्रीन ग्रोवर हां जी 16-74 ये नहीं है 71-72 ये है 16-74 ये है 16-74 सुनते रहो हां जी AM

0: ಕೆಲದ ನೀ ಮಾಡ
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1604

0: करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: हम थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: Hi, this is Arbaaz Khan and you're listening to Hanji Radio 167 4 AM.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

तेनु ओदे नाल मिलाउन आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।

0: इंडिया विच इमीग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमीग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
1: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
0: ऑस्ट्रेलिया विच इमीग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमीग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ।
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आई एम ई एडवाइजर।

स्वागत है तुहाडा अज दी कहानी अज दे विचार दे विच। अज दी कहानी या विचार दे विच गल करते हैं उन्हां शुकरानियां दी जिहड़ा असीं कदी कीता ही नहीं या करना भुलदे जाने। छे महीने पहलां दी गल है गुरद्वारा साहब दी। हफ्ते दे विच मेरा दो कु वारी जाना हो ही जांदा। इसे वक्फे दौरान दोपहर दे समय सेवा करदा कवीर मिलिया। वह पहलों वीर दुपहरे नहीं सी दिखता हुंदा, उन्हें हुणे जिद्दां दुपहरे दुपहरे आना शुरू किया सी, रोज आउंदा। एक दिन इदां ही मेल होए, थोड़ियां गल्लां बातां होईयां। मैनू उन्हें बड़े चाह नाल दस्सिया, कहिंदा वीरे मैं हुणे हुणे गुरद्वारे आना शुरू किया, बई हरियाणे वल दा सीगा। पंजाबी दे नाल नाल थोड़ा गल्लां दे विच हरियाणवी जिहा टच। जदों रोज मिलना तो बंदा दो चार गल्लां खोल के करदा ही है, क्योंकि जिद्दण पहले दिन गल हुई तो बई दी ये गल सी कि मैं नवा नवा आना शुरू किया, जिद्दां कोई चाह ना दसदा, वो जिद्दां खड़ गई मेरे दिमाग च। फिर एक दिन आपां कट्ठियां लंगर छकदे सी ते मैं उन्हूं पुछ ही लिया, बई भी तू कहिंदा सी भी नवा नवा आना शुरू किया, इहदा की मतलब होया? कहिंदा तुसीं सुण के हैरान होवोंगे, मैं कदी गुरद्वारा साहब ही नहीं गया सी अज तों पहलां। कहिंदा मैं हरियाणे च रहिंदा, उत्थे वड्डा होया, हुण इत्थे आ गया, इत्थे रहिंदे नूं 6 साल हो गए, ते एक पंजाबी वीर नाल काम करदा मैं। वीर भी कहिंदा काफ़ी वधिया, बड़ा मददगार आ, पर कहिंदा पिछे जे मेरे वीजे दा एक चक्कर पै गया। हरेक वड्डे वकील नाल गल कीती ते अखीर नूं समझ इहो ही पई कि हुण जो भी है किस्मत हाथी है, 50% चांसिस ने वीज़ा आ जाण, 50% आ के जो हुण तक कीता उहदी सारी मेहनत खराब है ते PR ना वी आवे। कहिंदा इह सुण के मैनूं बड़ा धक्का लगा कि सारी मेहनत दा कोई मुल ही नहीं पैणा। पर कहिंदा जिहड़े वीर नाल मैं काम करदा ना, उहने हमेशा रोज़ ही हरेक चीज़ दा शुक्र ही करदे रहना, ते उहने मैनूं वी इहो सलाह दित्ती, चल कोई ना झुरिया ना कर, अज मेरे नाल गुरद्वारा साहब चल, जो हैगा उन्हां चीज़ां दा शुक्र करके आउने। मैं भी हैरान सा कि जिहड़ा ऑलरेडी इन्ना झुरिया पिया उहनूं कोई कहे आजा शुक्र करके आउने, वह तो अरदास चाहुंदा होगा। पर वह कहिंदा उदण मैं गुरद्वारा साहब आया तो बई दे कहण ते पहली वारी शुक्र ही कीता भी धन्नवाद जो कुछ भी है जो कुछ भी बख्शिया। तो कहिंदा बैठिया ही अहसास होया कि मेरे तो वध इत्थे अमीर कोई जापदा ही नहीं, मेरे तो वध शायद ही किसे कोल स्किल होवे जो परमात्मा ने बख्शा ते मैं इन्ने पिछले सालां च सिखिया। कहिंदा बस उदन दा दिन सी ते उत्तों अगले 2 महीने मैं रोज आउणा ते सिर्फ शुक्र करना, सिर्फ शुक्र। पर परमात्मा जानी जाण, उहनूं पता कि शुक्र दे बदले भी इहनूं की देना, इहनूं किस चीज़ नाल नवाजना। तो उही होया जो होना सी, अर्जी बिना लाए मंजूर हो गई मुंडे की। तो कहिंदा उदण दे दिन तो लैके हुण 6 महीने हो गए ने, 2 महीने PR आई सी ते हुण 4th महीना होर है, मैं हाले भी जदों वेला होना इत्थे आ जाना, सेवा करदा शुक्र करदा, बड़ा मज़ा आउंदा। तो कई बार आप सिर्फ यो सोच लें भी इन्ने साल हो गए जाते, इन्ने साल हो गए मत्था टेकते, मेरी गल नहीं बनती, मेरी सुनी क्यों नहीं जाती? पर परमात्मा ने कोई डायरी लाई नहीं जिदे अटेंडेंस नोट करता हो, सिर्फ तो सिर्फ जड़ा दिलों सच्ची नीत नाल पहुँच करता ना वो सुनी जाती है। कई बार किसी की पहले दिन ही अर्जी मंजूर हो जाती, कई बारी साल भी लग जाते,
ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਰਮ 'ਚ ਢਾਲਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਵਾਰ ਬਸ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੂੰ ਪਾਏਂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਚਾਅ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਡੰਡੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਹਾਲੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: हां जी हां जी, ओए

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
3: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार
3: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
4: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: हाँ जी
1: हाँ भाई सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
2: हाँ जी।
3: Hi, man. I'm Saiko Mirbai from Manipur. Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.
5: Aye, sin lauriye unnya. Syane bande di samu samj aave ya naave. Jalak bande di aisi akh pad lene.

0: मुंबई सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होरवी सोखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: हाय मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हां जी 1674 AM और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे लोग हैं बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा सुनते रहिए रेडियो हां जी 1674 AM थैंक यू

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर? हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, हां जी हां जी, 16-74 ये नहीं है 71-72, ये है 16-74, ये है 16-74, सुनते रहो सुनते रहो। हां जी ये है।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਵੇਂ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਲਾਇਆ। 1981 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਐਕਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋ 3-3 ਅੱਖਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ NSV ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਕੂ ਕਾਂਗੜੇ ਹੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਬੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹੇ ਬੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਮਨਾ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਆਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਕੂ ਕਾਂਗੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਝੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। मैं सोच रहा सी कि मां बोली दी पहली ते आखरी पहचान दस्तखत ही ते हो सकते ने। बरीकी च सोचा जावे तां इह सब तों पहले उह अक्खर ने ते सब तों वधेरे वरते जाण वाले इह उह ने जिन्हां दे नाल तुहाडी शनाख्त होणी है। बाकी अक्खर तां इधर उधर कितें काम आउणे आ, इहदे उत्ते तां किन्ने वड्डे वड्डे कारोबार इधर उधर हो जांदे। पर खैर फिर मैं भी सोचदा कि मेरे वर्गे पता नहीं किन्ने कोने आ, जां फिर असीं किन्ने कां जिहड़े अपनी मां बोली दे विच दस्तखत करदे आ। खासकर पंजाब दे विचों तां मैनूं कोई नहीं लभदा दिसदा। कई वारी गल्लां करदे करदे कौमां दी गल चल पैंदी आ ते मैं फिर मैनूं पाकिस्तान तों आया इक सज्जन मेरा मुसलमान मित्र, वह मैनूं पुछदा सी कि तुसीं पंजाबी उधरले पंजाब तों आए लोग अपने आप नूं इन्ना इन्ना बहादुर समझदे हो, तुहानूं अपने मां प्यो दे दित्ते ना लैण दे विच शर्म क्यों आउंदी आ। आपां इत्थे वेखदे हां ना, ये जर्मन, ये रशियन, ये बहुत सारे देशों के ना बड़े औखे औखे ने, बड़े लम्मे लम्मे ने, पर वो जदों भी बोलते हैं उ ही ना दसते हैं जिहड़ा जन्म के वेले उन्होंने रख्या हुंदा। जां फिर कह लो कि मैनू इदां ही पता, हर कौम के विच दुनिया भर के लोग अपना ना सही बोलते हैं, उन्हां दे ना भी किहड़े गोरियां कोलों ले जांदे ने, पर वो कदी मैं वेख्या अपना ना नहीं वगाड़ते जिन्ना काम के उत्ते वेखदे आ। वो इस चीज़ के उत्ते जोर देंदे ने कि साडा ना ठीक लिया जाए। मैं सोचता असीं गुरु घर जाके पहला अखर कढ़ाउने आ फिर ना रखदे आ, इहदा मतलब कि वह ना गुरु का दिता, सानू कोई अधिकार नहीं बनता उस ना नू बदलन दा, उस ना दे विच कोई फेरबदल करन दा। 99% लोग अपना ना वगाड़ के बोलते हैं, इहदा मतलब जो गुरु ने दिता वह सानू मंजूर ने। असीं वह ना बोलते हैं जिहड़े गोरियां नू लैने सौखे होण, जिहड़े वह सौखे बोल सकते होण, जां जिथे वह रहिंदे होण उस देश वर्गा आपां ना कर लैंदे आ। कोई सुरेंद्र आ तां उहने नाल शहरी ला लिया, गुरिंदर आ तो उन्हें नाल गैरी ला लिया, शैलिंदर आ तो उन्हें शैली सौखा करके दस दिता। बहुत घट ने शायद जिहड़े इदा ना करते हो। फिर मैं उहदियां गल्लां सुन के इदा महसूस करदा जिवें असीं बुझदिल होईए, असीं मौका वेख के मौके दे अनुसार जिवें अपने आप नूं बदल लैंदे होईए। बुझदिल इहो ही तो हुंदा जिहड़ा औखे हालातों का सामना नहीं करता, जिहड़ा सौखा ही उस रंग दे विच रंगिया जांदा जिहड़े रंग च कोई उहनूं रंगना चाहुंदा होवे। हुण तां असीं अपने न्याणियां दे नाम ही इधर उधरों वेख के रखने शुरू कर दित्ते। न्याणियां दे नाम सुण के लगदा ही नहीं आ कि ये पंजाबी न्याणे ने। मां प्यो जिन्ना चिर नाल ना होण ना तो आप समझ ही नहीं सकते। पहली पछाण तो बंदे की ना आती है, ना सुन के कोई अंदाजा लाता कि यह कितों का, पर साडा हुण नहीं पता लगता। दूजिया की रीस करते करते आप इन्नी ज़्यादा रीस करनी शुरू कर दी कि साढ़े हुण पंजाबी नाम ही नहीं रहे। होर होर कौमां तो आप रखने शुरू कर दते, फिल्मां चों वेख के रखने शुरू कर दते, सौखे ना वेख के रखना शुरू कर दते। अपने विरसे ते बोली दे उत्ते शायद माण ही नहीं रहा, शायद सानू भरोसा नहीं रहा गुरु तो लए नावां दा। जे साडा साडे भैण भरावां दा साडे प्यो दा दादे दा ना गुरु तो रख्या गया सी, जाके गुरु घर तो कढवाया गया सी, इहदा तां सीधा सीधा मतलब यह होया कि हुण वो फैसला साढ़े बजुर्गों का सानू गलत लगता है, गुरु तो क्यों लेना ना। इस चीज़ की शायद सानू कोई अहमियत ही नहीं रही। हुण असीं आप ज़्यादा सियाने हो गए, ना रखना तो असीं आप रखांगे। गुरु नूं थोड़ी पता हुण आपां बाहर आ गए, गुरु नूं थोड़ी पता कि जे आपां उहदा दित्ता ना रख लिया तो गोरियां तों लिया नहीं जाना। इस करके हुण सानू आप फैसले लेने पैणगे। हुण असीं आप ज़्यादा सियाने, हुण असीं गुरु नूं दसांगे किहड़े ना रखने अगे। सच दसां तां मैं अपने उस दोस्त नूं इह दस ही नहीं सकिया की दसदा उहनूं, की दसदा कि भरावा बाहर दी गल तां छड्ड। तैनू लगता है कि बाहर का वर्तारा, पर मैं जो अपने पिंड झाती मारा तो उत्थे भी यो कुछ ही चलता, उत्थे भी हुण कुछ सही नाम वाला नहीं मिलता। पर यह दसन दे विच होर वधेरे शर्मिंदगी सी, क्योंकि वह तो सोचता सी कि शायद असी बाहर आ के रंग बदलते हैं। उन्हूं की कहां कि असी अपने घर दे विच भी रंग बदल लेने, उत्थे भी यो वर्तारा चल रहा। सच दसां तां यह पल मेरे लिए सब तो ज़्यादा शर्मिंदगी वाले सी। शायद होर भी कोई सोचता होवे, शायद होर भी कोई सोच रहा होवे, जां फिर शायद होर भी कोई सोचने लिए मजबूर होवे, जां होर किसी लिए भी ये गल अहमियत रखती होवे। खैर ये विचारां हले बहुत लंबियां ने, ते सानू ये विचारां करन दी बहुत ज़्यादा जरूरत है। कलम पंजाब दे विचों सुरजीत सिंह विरकुरां दी ये लिखत तुहाडे नाल सांझी कीती, साढ़े तक भेजी सी सुखविंदर सिंह परवाल होरां ने। आस करदे हां कि इस लिखत विचली तुसीं मनोरथ जरूर समझे होवे। पिछले दिन ही असी मां बोली दिवस मनाया, बड़े आपां पोस्टर लिख लिख शेयर किए एक दूसरे नाल, बड़ी आपां विचार चर्चावां सुनिया, कई ने शेयर भी लिख के पाए होणगे अपनी मां बोली। पर शायद साडा असल फर्ज कुछ होर बनदा। जे डूंघाई दे नाल वेखीए सुरजीत सिंह होरां वांगू सोचिए तां फिर तुहानूं बहुत कुछ इदां दा लभ जू जिथे अहीं गुनहगार साबित होवांगे। ते जे अहीं वाहा दे नाल चलना तां फिर गल शुरू ही नहीं हुंदी, फिर तां इत्थे ही शुरू हुंदी ते इत्थे खत्म हो जांदी। क्योंकि बहुत सारिआं दे लई इस गल दे कोई मायने नहीं, ते बहुत लोग ने जिन्हां दे लई बहुत ज़्यादा वड्डे मायने ने। अब सोच आपो अपनी, पर समा कढ के इस विषय दे उत्ते सोच विचार बनदा तां जरूर है। जे फिर भी किते लगे कि हाँ साढ़े फैसले ठीक ने, आपां ठीक जा रहे हैं, तां वी ठीक है। पर जे आपां ये कहीए कि इहदे उत्ते तां आपां समा रहिंदे सोच ही नहीं पाए, जां साडे कोल समा ही नहीं, जां कदी ध्यान नहीं दिता, जां कदी किसे ने दस्या नहीं, तां फिर गल एक अलग पासे नूं जांदी है। कहिंदे ने कि सब तो पहलां सानूं अहसास होना जरूरी हुंदा कि आपां कुछ गलत कर रहे हां जां आपां कुछ गलत कीता, उस तो बाद फिर उहदे सुधार वल नूं गल्लां चलदियां ने। पर फिलहाल आपां पहलां इस विशे दे उत्ते अपने आप दे नाल विचार तां जरूर करिए, अपनी मां बोली का सत्कार तो जरूर करिए। मां बोली का सत्कार अपनी मां का सत्कार, मां का सत्कार उस धरती का सत्कार जिथे तुसी जन्म लिया, ये जीवन जी रहे हैं, ये साह लै रहे हैं, उस धरती का सत्कार, उन्हां गुरुआं पीरां का सत्कार, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਹੈ?
2: ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਾ ਤਜਰਬਾ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ PR ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, AAT ਅਪੀਲਸ, ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ, PR, US ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
1: ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0406-660-960 ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ bansalimmigration.com.au।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: You are listening.
3: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji, Radio Haji,
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station,
3: Radio Haji,
2: stay tuned.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Arbaaz Khan and you're listening to Hanji Radio 167 4 AM.

0: देश भूमंडल
1: कई कोट ससिर सूर नखत्र कई कोट देव दानविंदर सिर छत्र
0: सुमदरी अपने सूतार है नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार है।
1: कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र
0: कई कोट के रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट किए चरजीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी
0: कई कोट जाकिन प्रसाच कई कोट भूत पे सुकर मिर्गा
1: सब ते नेरा सब हूते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर्क सुर्ग निवासी
1: कई कोट जन मैं जीवै मर है कई कोट बहु जूनी फिर है
0: कई कोट बैठती खाए कई कोट खाले तक पाए
1: कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मह चिंत
0: जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभु के हाथे
1: कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लिव लागी
0: कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म नहंते
1: कई कोट दर्शन प्राप्त आस्तिन को मिल्यो प्रभु विनाश
0: कई कोट मां गए सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग
1: जिनको हे आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन
0: कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार कई ज्योत कीनो विस्तार
0: कई बार पसरो पासार सदा सदा एक अहंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत प्रभु ते होए ब्रह्म माहे समात
0: ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभु सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास
0: कई कोट तत के बेते सदा निहारे इको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद सद ही जीवै
0: कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सहि समावै
1: अपने जन को सास सास समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे
0: सुखमनि सुख अमर प्रभु नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दस श्लोक
1: कारण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार नै जल थल महियल सोए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: करन करावन करने जोग जो तिस पावै सोई होग
1: किन मैं थापो थाप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा
0: हुक्मै तार अतर रहावै हुक्मै उपजै हुक्म सुमावै
1: हुक्मै ऊंच नीच व्यवहार हुक्मै अनक रंग प्रकार
0: कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा समाई
1: प्रपावै मन गत पावै प्रपावै ता पाथर त्रावै
0: प्रपावै बिन शास्त्र राखै प्रपावै ता हर गुण पाखै
1: प्रपावै ता पथ तो धारै आप करै आपन बिचारै
0: दोहसरे आका स्वामी खिलै विकसै अंतर जामी
1: जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर ना आवै
0: हो मानक ते क्या होया वै जो तिस पावै सोई करावै
1: इसका हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे
0: अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै
1: परमे भूला देह दिसतावै निमुख माहे चार कुंट फिरावै
0: कर कृपा जस अपनी भगत दे नानक ते जन ना मिले
1: खिन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज
0: जाका दिष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दस पलटावै
1: जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गने जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई
0: इसका बल नाई इस हाथ कर्म करम सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो
0: कबहु ऊंच नीच में बसै कबहु शोक हरख रंग हसै
1: कबहु निंद चिंद व्यवहार कबहु उब काश पयाल
0: कबहु बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिलावन हार
1: कबहु नित करै बो भांत कबहु सोई रहै दिन रात
0: कबहु महाक्रोध विकराल कबहु सर्व कियो त्रवाल
1: कबहु होए बह बड़ राजा कबहु पेखारी नीच का साजा
0: कबहु अप कीर्त में आवै कबहु भला भला कहावै
1: ज्यों प्रभु राखै तिवि रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै
0: कबहु होए पंडित करे बख्यान कबहु मोहन धारी लावै ध्यान
1: कबहु तट तीर्थ स्नान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबहु कीट हस पतंग होए जिया अनक जोन भर मैं भरमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावै ज्यों प्रभु पावै तिवै नचावै
0: ज्यों तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए
1: कबहु साध संगत ए हो पावै उस स्थान ते बहुर न आवै
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश
1: मंतन नामर ते करंग सदा विसै पार ब्रह्म कै संग
0: ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान
0: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ ग्यारह श्लोक
1: सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान सो नर पाती हो स्वान
1: जो जानै मै जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत
0: आपस को कर्मंत कहावै जन्म मरे बो जोन भरमावै
1: धन भूमगा जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावै नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै
1: धनवंता होए कर गुर बावै तरन समान कछ संग न जावै
0: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आसु पल पीतरता का होए बिना
1: सब ते आप जानै बलवंत खिन मै होए जाए पसमंत
0: किसे ना बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जाका मिटै बिमान सो जान नानक दरगै परवान
0: कोट कर्म करे हो तारै श्रम पावै सगले बिरथारै
1: अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार
0: अनक यत्न करा तुम नी द्रवै हर दरगै को कैसे गवै
1: आप सुखो जो भला कहावै ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ।

0: आवे।
1: सर्व किरिंजा का मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए।
0: जब लग जाने मुझ ते का छोए, तब इसको सुख नाही कोए।
1: जावे जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्व जोन मैं फिरता।
0: जब तारे को बैरी मी, तब लग निचल नाही चीत।
1: जब लग मोह मगन सुमाए, तब लग परम लय देश जाए।
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे।
1: सैस कटेला कोट तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे।
0: अनक भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे।
1: बिना संतोख नहीं को राजा, सुपन मनोत बिते सब काजे।
0: नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए।
1: करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप।
0: करन करावन करने हार, इसका हाथ कहां विचार।
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप तब सोए।
0: जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हु कै संग।
1: पूजे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक।
0: मरण बिन सह आवे न जाए, नानक सद ही रहया समाए।
1: आप उपदेश समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ।
0: आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओहो करने हार।
1: उसते बिन कहो किछ होए, थान थन अंतर एक कै सोए।
0: अपने चले तब करने हार, कौत करे रंग अपार।
1: मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए।
0: सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने विख्यानी।
1: सच सच सच सब कीना, कोड मदे किने विरले चीना।
0: भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर पार अनूप।
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी स्वर्ण बखाणी।
0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत।
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ बारह श्लोक।
0: संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका, बहर बहर अवतार। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
1: संत के दुखन हार जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे।
0: संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए।
1: संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सुबाते ही।
0: संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए।
1: संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक बीतर।
0: संत के दुखन ते मुख पावे, संतन के दुखन कागजों लवे।
1: संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए।
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले।
1: संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए।
0: संत दुखी का था को नाहे, नानक संत पावे ता ओए भी गत पाहे।
1: संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिंटिक न पाई।
0: संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा।
1: संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी आर दीन।
0: संत के निंदको सर्व रोग, संत के निंदको सदा बिजोग।
1: संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख।
0: संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसै का निमित।
1: संत के दुखी को डान लागे, संत को दुखी को सब त्याग।
0: संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी।
1: संत का दुखी जन्म मरे, संत के दुख ना सुख ते टरे।
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए।
1: संत का दुखी अद बीते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे।
0: संत के दुखी को ध्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइए।
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा।
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीजा पे ही खाहे।
1: संत के दुखी को अवर ना रखन हार, नानक संत भावे ता ले उबार।
0: संत का दुखी ओ बिल लाए, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पावक इधर नहीं त्रापे।
0: संत का दुखी छुटा की ला, जो बुआर तिल खेत माहे बहेला।
1: संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत।
0: किरत निंद का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया।
1: संत का दुखी बिग रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिला सजाए।
0: संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी मा नाम रहना जीवाइय।
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उचले निराशा।
0: संत के दुख न तृष्णा कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए।
1: पया कितने मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए।
0: सब कर तिसके ओहो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: सब की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास।
0: सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया।
1: अपना खेल अब करने हार, दूसर कौन कहे विचार।
0: जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम, दे बड़भागी नानक जन से।
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ तेरह श्लोक।
0: तजो सियानप सुरजन हो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
1: मान की टेक विधि सब जान, देवन को एक है भगवान।
0: जिस कह दिया रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए।
1: मारे राखे एक आप, मान कै कुछ नाही हा।
0: तिसका हुक्म बूढ़ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए।
1: सिमर सिमर सिमर पर सोए, नानक बिघ न लागे कोए।
0: उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार।
1: निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो।
0: नैनो पिव ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग।
1: चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद।
0: हर हर कर्म सर्वन हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा।
1: बड़बागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर की गुण गाहे।
0: राम नाम जो कर है बीचार, से धनवंत गनी संसार।
1: मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी।
0: एको एक एक पछाने, एतुत की हो सो जी जाने।
1: नाम संग जिसका मन माने, नानक तिन्ह निरंजन जाने।
0: गुर प्रसाद अपन आप सूझे, तिसकी जान मनो तृष्णा बुझै
1: सत्संग हर हर जस कह तू सर्व रोग त्यो हर जन नह तू
0: अंदर कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लागह दुख
1: जिसको हर पर मंचित आवे सो सन सुहेला नहीं डुलावे
0: जिस पर अपना कृपा कर सो सेव कहो किसते डर है
1: जैसा सत तैसा दिष्ट आया अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजा गुर प्रसाद तत सा बूझिया
1: जब देखो तो सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल
0: नह किछ जन्म नह किछ मरै अपन चलित आप ही कर है
1: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट आज्ञाकारी तारी सब शिष्ट
0: आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राज थापो थाप
1: अविनाशी नाही किछ खंड तारन धार रिहु ब्रह्मांड
0: अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तनमंत
0: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख बिसारन
1: आपे मेल लय कृपाल गुर का सजो पै निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागै जिसनो कृपा करह बड़ भागै
1: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान
0: जो किछ करै सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसै हर संग
1: सह सुबह होवे सो होए करने हार पछाणै सोए
0: प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना
1: जिसते उपजे तिस महे सुमाए ओए निधान ओए सुख निदान उन्हों बनाए
0: आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ चौदह श्लोक
0: सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जा कै स्मरण उदरिय नानक तिस बलिहार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: टूटी गणन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल
0: सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप अमनासी प्रभा पे
0: आपन की आकछु न होए जी सौ प्राणी लोचै कोए
1: तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम
0: रूपवंत होए नाही मोह है प्रभु की जोत सगल घट सो है
1: तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब की तिसका दिया दरब है
0: अत सूरा जे को कहावै प्रभु की कला बिना कहतावे
1: जे को होए बह दातार तिस दिन हार जाने गवार
0: जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सो जन सदा अरोग
1: ज्यो मंदिर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन
0: ज्यो पाखान नाव चढ़ता रह प्राणी गुर चरण लागत निस्तार है
1: ज्यो अंत का दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास
0: ज्यो महाउद्यान मह मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: इन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बिल लाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइए
1: दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्या तू तसै चितार
0: जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान
1: कौन बसताई तेरे संग लपट रहो रस डूबी पतंग
0: राम नाम जा फिर दे माहे नानक पद सेती कर जाहे
1: जिस वकर को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया
0: ताजब मान लेहो मन मूल राम नाम हृदय महतूल
1: लाद खेप संतै संचाल अवर त्या विखिया जंजाल
0: धन धन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगै सोए
1: हो वापार बिरला वापार है नानकता कै सद बलिहार है
0: चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो
1: साध की तूर करो स्नान साध उपर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा वड भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए
1: अनक विगंते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चाख है
0: कोट गही संत है दर आया सर्ब सुख नानक तेह पाया
1: मृत को जीवा लनहार पुखे को देवत आधार
0: सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे
1: सब तिसका करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग
0: जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एह करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
0: जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रवचीत
1: भगत भगत सुनिए तिह लोए जाके हृदय को होए
0: सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुकहत
1: साची दिस सच आया कार सच वर्ते साचा पासार
0: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता
1: सुख मनी सुख अमृत प्रब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ पंद्रह श्लोक
0: रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रापिन तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: अविनाशी परम मन में राख मन की तू प्रीत त्याग
0: तिसते परै नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद
1: सातरे की चरनी पाओ नानक कै मन इहो अनुराग
0: मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग
1: हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सत जाकै सर्ब थोक सुनिए कर ताकै
1: राज मैं राज जोग मैं जोगी तब मैं तभी सरगस्त मैं भोगी
0: त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे
0: पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवैसे
0: तेह गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान
0: नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै करंग
1: नाना बिकी नो विस्तार प्रभ बनासी एकंकार
0: नाना चलित करे खिन माहे पूरहे ओ पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद करबंत बनाई अपनी कीमते आपे पाई
0: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ
1: नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
0: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान
1: नाम के धारे आगास पताल नाम के धारे सगल आकार
0: नाम के तारे पुरिया सा पवन नाम कै संग उदरे सुन सरवन
1: कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी
0: सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत
1: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई
1: सत बचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत निरत बूझे जे कोए नाम जप ताकि गत होए
1: आप सत की आसव सत आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्ट सो कर न हार अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मीना जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया
0: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझा तिस आया स्वाद
1: प्रभु कै रंग राज जन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे
0: कोए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरे संसार
1: जन का सेवक सो वडभागी जन कै संग एकले गुलागी
0: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम 816 श्लोक
0: आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत पे खनहार नाम सत सत आवनहार
1: आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी
0: शब्द सत सत प्रभ बक्ता सुरत सत सत जा सुनता
1: पूजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या
1: जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत ज्ञान तिस्मन प्रगटाया
0: पैते निर्भव होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना
1: बस्त मैं ले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई
0: बूझै बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग
0: सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ तारै नानक सो सेवक सास सास सुमारै
0: अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै
1: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत राखै ताकि गत मित कोई न लाखै
1: प्रभ कै सेवक को न पहुंचै प्रभ कै सेवक उचते उचै
0: जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मैं कर राखै पसम करे लश्कर कोट लाखै
0: जिसका सास न काटते आप ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन कर्तव पात तिसके कर्तव बिरथे जात
0: मारे न राखे अबर न कोए सर्व जिया का राखा सोए
1: काहे सोच करे रे पानी जप नानक प्रभ अलख बडाणी
0: बारम बार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मन तंत्र पिए
1: नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके अबर नाही दिसताया
0: नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम कसंग
1: नाम रस जो जन तपताने मन तन नामे नाम समान
0: उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कै सदकाम
1: लो जाचे वादन रात प्रभ अपने जन की नींदात
0: करह भगत आत्म कह चाय प्रभ अपने स्यों रह है समाये
1: जो हो आहो वसु जाने प्रभ ने का हुकुम पछान
0: तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर पर बसे हजूर है कहो नानक से जन पूरे
0: मन मेरे तिन की ओट ले हे मन तन अपना तिन जन दे हे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता
0: तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दरसा पाप मिटावे
1: अवर सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग
0: आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम 817 श्लोक
0: सत पुरख जन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल
0: सिख की गुर दुरमत मल हेरै गुर बचनी हर नाम उचरै
1: सतगुर सिखै बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै
0: सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे
1: सतगुरु सिखा हलत पलत सवार है नानक सतगुरु सिखो जी नाल सुमार
0: गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सह है
1: आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै
0: मन बेच सतगुरु कै पास ते सेवक के कार्ज रास
1: सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: बीस विश्व गुर का मन मान है सो सेवक परमेश्वर की गत जान
0: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्वन धान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग दाता
0: ब्रह्म है जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ
1: ਸਹਸਿਆਨ ਪਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗਰੁੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
1: ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ
0: ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੁਮ ਪਤਿਆਨੇ
1: ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ
0: ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਜੇ ਵਾਏ ਕੁਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਬੇ
0: ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ
1: ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ
0: ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਹੈ
1: ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ
0: ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ
1: ਪੁਰਖਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪਟੇ ਗੁਣਤਾਸ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇ ਸੇਵ ਕੌਦੇ
1: ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ ਮਨ ਮੈ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ
0: ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਭਰ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ
1: ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ
0: ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ
1: ਪਾਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ
1: ਚਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭਉ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਾਜਾ ਸਰਵਨ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਅਪਸਰ ਗੁਣ ਭੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ
1: ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ
0: ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
1: ਪੋਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪੈ ਪ੍ਰਗਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
0: ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਅਠਾਰਾਂ ਸਲੋਕ
0: ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵ ਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ
0: ਅਵਰੋ ਪਾਸਾ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮੈਂ ਉਰਧਾਰ ਹੋ
1: ਕਰਨ ਕਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਥ
0: ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ
1: ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵ ਹੈ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ
0: ਜੇ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣੀ
1: ਅਨਕ ਉਹ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਅਵਖ ਦਲਾਏ
0: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰ ਗੈ ਪਰਵਾਨ
1: ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦੈ ਦਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ
0: ਕਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ
1: ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰਨਾਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ
0: ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਸਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮਫਾਸੀ
0: ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ
1: ਆਵਾ ਗੁਣ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ
0: ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ
1: ਅਨਕ ਪਾਵਨ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ
0: ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੂ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਚਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ
1: ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ
0: ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਕੁਟਾਂਬਰ ਬਨ ਤੈਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ
1: ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ
0: ਹਸ ਹਸਤੀ ਰੱਥ ਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਬਾ ਸਾਰੀ
1: ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ
0: ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੋਂ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ
1: ਹਰ ਕੀ ਪਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ
1: ਆਪ ਜਪਹੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਓ
0: ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤ੍ਰਿ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖ ਫੈਲ
0: ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗਰਾ ਸਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ
1: ਛਾੜ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸਚਤਨਾ
0: ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰ ਗੈ ਜੈਕਾਰ
1: ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤ ਕਲੇਖ
0: ਏਕੋ ਜਾਪੇ ਕੋ ਸਾਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ
1: ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਮੰਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ
0: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆ ਪੂਰਨ ਪੂਰਹਿ ਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪ
1: ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭੈ ਏਕ ਅਰਾਧ ਪਰਾਛਤ ਗਏ
0: ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਤਾ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਉੱਨੀ ਸਲੋਕ
0: ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ
0: ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਤੇ ਆਓ
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ
1: ਏਕੋਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ
1: ਜਿਨ ਚਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾ ਨੇ
0: ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਪਰੈ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ त्याग अंतर प्रगास अंध निर्लाग
0: बड़ भागी जपया प्रसोए नानक नामर ते सुख होए
1: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई
0: जन को प्रभ होए ओ दयाल सेवकीनो सदा निहाल
1: बंधन काट मुकुत जन भया जन्म मरण दुख परम गया
0: पिछपुनी सरदासा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी
1: इसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए
0: सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे की आ जाने
1: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
0: सो क्यों बिसरै जे अग्न मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै
1: सो क्यों बिसरै जे बिकते गाड़ै जन्म जन्म का टूटा गाड़ै
0: गुरपुरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो हो काम आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो हो
1: पाए त्रिय संसार बिन भक्ति तन हो सी चार
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम
1: सगल दुख का हो तनाश नानक नाम जपो गुण तास
0: उपजी प्रीत प्रेम रष्टाओ मन तन अंतर एही सुआओ
1: नेत्रो पेक तरस सुख होए मन बिकसै साधु चरण तोए
0: भक्त जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग
1: एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया
0: ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए
1: प्रभ क्षण दीन दयाल भगत उछल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल
1: आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
0: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
1: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान
0: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
1: अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन भाई
0: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
1: पली सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूरन गुरुमंत
0: साध संग प्राप्त हो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
1: मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
0: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सतनाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जब अकार कुछ न दृष्टि ताप पुण तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वर्ण चिहिना जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
0: जब अपन आप पार ब्रह्म तम हो कहां किस होवत परम
1: अपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रा केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
1: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्राव सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए
1: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे
0: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
1: अविनाशी सुखे अपने आसन तै जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रव सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ नरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
0: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तूता
1: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान
0: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस
1: जह जो स्वरूपी जोत संग समावै तह किसे भू कौन तृप्तावै
0: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार
1: जा अपनी सुवा अपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई
0: जह सर्व कला आपह परवीन तह वेदक तेव कहां कोचीन
1: जब अपने आप उतारे तो सगन अपसगन कहां बिचारे
0: जह अपन ऊंच अपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप
0: जह अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया
1: आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश
0: जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जह अपन आपा पतियारा तह कौन कथै कौन सुन न हारा
0: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा
1: जह आप रचियो पर पंच आकार तेह गुण में कीनो विस्तार
0: पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंशावत
1: जाल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार
0: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान
1: अपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तो नानक एक है
0: जह अवगत भगत है आप जह पसरै पासार संत प्रताप
1: तुहु पाक का आपै धनी उनकी शोभा उन्हु बनी
0: आप है कौत करै आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग
1: जिस भावै तुसी अपन नाय लावै जिस भावै तुस खेल खिलावै
0: बेशुमार अथा अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक्की श्लोक
0: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सतनाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
0: जंत सभावै तां सृष्टो पाए अपने भाणे लए समाए
1: तुम ते पिन्नी किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
0: जाको प्रभ जी जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
1: सो समुद्र सी तत का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
0: जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे
0: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सरेक निरंजन राए
1: जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ
0: गुण दान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार
1: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
1: तत पाले जी अनुभव पात जो जो रचियो सुत सहत्यार
0: जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया
0: जन लागा हर इक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
1: सेवक को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए
0: इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार
1: बंधन तोर पै निर्वैर अंधन पूजै गुर के पैर
0: यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले
1: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
0: राम नाम तत करो हो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
1: अमृत बचन हर की गुण गावो प्रांत नुनकाए सुआओ
0: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटे अज्ञान बिन सहंदीरा
1: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
0: हलत पलत दो लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परीखिया
0: मनता नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते भौ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी
0: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवे जाहे
1: इसते दूर कहा को जाए उबरे रखन हार ते आए
0: निर्भौ जपै सगल भौ मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे
1: जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताकै कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख तो उदरत श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसे सोत निहाल ताकै निकट न आवत काल
0: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया
1: सुख मनि सुख अमृत पव नाम भल जना कै मन विश्राम अठ बाई श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
0: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
1: नौनद अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहत नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद
1: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते संसो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत
1: करण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे
0: जिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
0: वाणी प्रभु की सब को बोले आप अडूल न कबहु डूले
1: सर्व करा कर खेले खेल मोल न पाई है गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार रहे हो स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं एहो विसास
0: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन
0: जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो हुए सो इश्क माने करन करावन हर प्रभ जाने
0: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
0: तिस पावे ता करे विस्थार तिस पावे ता एकंकार
1: अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन लिप्त कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर
1: अंतर गज से आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए
0: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया
1: सबके मदल पत्तो रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए
1: इसते होए सुनाही बुरा उरे कहो किने कुछ करा
0: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
1: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राह
0: ताकि गत नित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए
1: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
0: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
1: जानावन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
1: सुख मनि सुख अमृत पव नाम भगत जना के मन विश्राम अठ तेई श्लोक
0: पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
0: सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस नित्या गो तरंग संत जना की दूर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो साध संग आगन सागर तरहो
1: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार ਨਮਸਕਾਰ
0: ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ
1: ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਰਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ
0: ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ
1: ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ
0: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ
1: ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਗ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ
0: ਸੰਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੋ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਿਸਤਾਰ
1: ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ
0: ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ
1: ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਤ ਕੇ ਮਾਥੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ
0: ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਸੁਣ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭੈ ਸਬਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ
1: ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਰਸ ਨਾ ਕਹਤੇ
0: ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ
1: ਕਬ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ
1: ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ
0: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ
1: ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਟ ਚਲੇ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
0: ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤਰਿਦ ਨਵ ਨਿਦ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ
1: ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪਵ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾ ਸਭ ਕੈ ਮਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ
1: ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੀਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
0: ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ
1: ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਇਹ ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ
1: ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ
0: ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਛੁਟੈ
1: ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ
0: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਮਰਨਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ
1: ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਬੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ
0: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚੌਵੀ

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। इस पूरी अवेकनिंग में, इस पूरे जागरण के प्रक्रिया में हमने ये जाना है कि किस तरह से अगर हम रिश्तों को एक नए रूप में देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो परेशानी आ रही थी, जो मुश्किलें आती हैं, जो हर बार हम ये कहते हैं कि रिश्ता सही नहीं चल रहा, वो बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बच्चे का अपने पिता के साथ हो, या फिर एक स्टूडेंट और टीचर का हो, आज जरूरत है कि हर रिश्ते को हम एक नए अंदाज, एक नए नजरिए और जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जो ज्ञान हमें मिला है, उस अवेयरनेस के साथ देखें तो शायद एक नए रूप में नजर आएगा। पति पत्नी के रिश्ते के कई नए प्रारूप हमारे सामने आए हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव हो सकती है, और वो है विश्वास यानी ट्रस्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जब से हमने रिश्तों के ऊपर बात करनी शुरू की है, इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि एक नए अंदाज में हम देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया हर रिश्ते को नई नजर से देखना। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार यही बात कर लेते हैं कि ना मैं बता रही हूँ ना आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे एकदम से रियलाइज हुई है कि हम कितना भी सोच लें लेकिन जब हम इस तरह से कार्यक्रम में बैठते हैं तो कुछ और बात ही निकल आती है, एक ऐसी ज्ञान की बात जो हमने सोची भी नहीं होती। तो मैं तो अपने आप को स्वयं मान रही हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है एक बार फिर उसके बारे में बात करते हैं।
1: जहाँ तक हर बात, हर पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करते, तो ये हर बात बहुत गूढ़ रीति से हमें सारी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो निराकार परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो स्वयं इस समय सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं को अपना परिचय देते और फिर जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जो जीवन में चलते चलते कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, तो उस यात्रा को सिंपल करने के लिए जो इतना डीप नॉलेज हमें मिलता है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ इट इज इट्स वेरी डीप बट वेरी सिंपल, और वो सिंपल होने के कारण फिर वो इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है।
0: ट्रस्ट की बात करते हैं कि विश्वास, जैसा कि हम शिव बाबा पे कर रहे हैं 100% विश्वास रखते हैं, तो उसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में देखें, हमने रिस्पेक्ट की बात की थी, हमने ये बात की थी, अपेक्षाओं की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो सारे एस्पेक्ट्स फिर भी इतने मायने नहीं रखते हैं कि कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं। सबसे बड़ा जो, क्योंकि वो रिश्ता बन रहा है जहां कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी जन्मों का रिश्ता है, सो वहां विश्वास, हम अपने दोस्त पे विश्वास जरूर कर लेते हैं, यहां विश्वास, इस रिश्ते में विश्वास कितना जरूरी हो जाता है।
1: विश्वास हर रिश्ते में जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो खून का रिश्ता है उसमें विश्वास करना इजी होगा और जो इस तरह से यात्रा के दौरान जुड़ा हुआ रिश्ता है उसमें डिफिकल्ट है। नहीं, आजकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी विश्वास की कमी है, तो वो तो सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, तो उसमें क्यों कमी है। तो ट्रस्ट इज नॉट समथिंग विच नीड्स टू बी यू नो रिलेटेड टू बी अ ब्लड कनेक्शन, इट हैज टू बी अ सोल टू अ सोल रिलेशनशिप। तो विश्वास तो रिश्ते के अलावा भी एक्चुअली हर आत्मा को, हर आत्मा पर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले कि मैं औरों पर विश्वास करना आज क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं शायद आज खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही।
0: नहीं, मैंने ब्लड रिलेशन की भी बात इसलिए की थी कि हम ये कहते हैं कि चलो उनको तो हम माफ कर सकते हैं, वो है तो हमारा खून ही, हमारा अपना ही है, कोई बात नहीं करते।
1: तो उनको हम माफ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम उनको माफ करना चाहते हैं, बाकी माफ तो हम किसी को भी कर सकते हैं। फॉरगिव, वी कैन फॉरगिव एनीबॉडी, व्हाई, बिकॉज आई नो हाउ टू फॉरगिव, लेकिन हम चूज करते हैं किसको फॉरगिव करना किसको नहीं करना। अगर हमें फॉरगिव करने की कला आती है तो अगर हम एक को कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट क्या है, उसको कैसे डेवलप करना, वो मुझे पहले अपने आप के साथ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वर्तमान समय औरों पे ट्रस्ट करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट अर्थात फेथ, एक इंटेग्रिटी जो मुझे आप पर या किसी और आत्मा पर करनी है, लेकिन आज जनरली हम डाउट करते हैं, यू नो इवन इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वो ट्रस्ट बहुत जल्दी हिल जाता है। शिव बाबा हमें बताते हैं कि संशय और निश्चय यू नो डाउट या ट्रस्ट, इसमें कोई परसेंटेज नहीं हो सकती है। हम जो एफर्ट करते हैं उसमें परसेंटेज होती है, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं इसमें परसेंटेज नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट
2: बढ़ता जाएगा।
1: तो शिव बाबा कहते या तो निश्चय है या निश्चय नहीं है।
0: लेकिन मैं अपने लिए ये ऑप्शन रखता हूँ कि अगर मुझे धोखा मिला तो मैं इतना हर्ट या हर्ट नहीं हो जाऊंगी कि मैं अपनी जिंदगी ही
1: ये थॉट पहले से क्रिएट करना कि अगर मुझे धोखा मिला मतलब आई डू नॉट ट्रस्ट, मतलब आई एम ऑलरेडी डाउटिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले व्यक्ति को दे दिया कि इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये धोखा देंगे। तो फिर वेयर इज द ट्रस्ट? परमात्मा यही बताते हैं कि अगर एक भी थॉट डाउट की आए, एक थॉट, ज्यादा नहीं, एक थॉट भी डाउट की आए, तो अभी आप डाउट वाली साइड पर है, ट्रस्ट वाली साइड पर नहीं है, अभी संशय है उस रिलेशनशिप में। निश्चय जिस रिलेशनशिप में होगा जहां एक भी थॉट, वर्ड, एक्शन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक भी थॉट डाउट की नहीं होगी, दैट इज ट्रस्ट। एंड फिर वो इसीलिए परसेंटेज में नहीं हो सकता। जिस दिन तक डाउट्स है माइंड में तब तक हम डाउट वाली स्टेज पे है कि मैं इनको डाउट करती हूँ, लेकिन जिस दिन मन से सारे डाउट्स हट गए, एक थॉट भी डाउट करने आया, उस दिन कह दीजिएगा कि नाउ आई ट्रस्ट दिस पर्सन।
0: लेकिन ट्रस्ट हैज टू बी अर्नड। कहा जाता है कि आपको अर्न करनी पड़ेगी, मेरा विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। विश्वास जीतिए आप।
1: ट्रस्ट मुझे करना है तो उसके लिए सामने वाले को कुछ नहीं करना है। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे हैं। अब आपको ट्रस्ट करना या नहीं करना ये चॉइस मेरी है। आपको अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखाना होगा उसके लिए, क्योंकि वो में भी समय लगता है कि हम आपको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली कहा जाता है कि ट्रस्ट तो फाउंडेशन है। सो दैट मींस वी आर ट्राइंग टू से कि हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं और बनाते बनाते धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तब ट्रस्ट वाला फ्लोर बीच में डाल देंगे। बट वी सेड इट्स द फाउंडेशन, सो दैट मींस इट विल हैव टू बी द फर्स्ट थिंग। इट कैन बी समथिंग दैट इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज लेट्स से इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सो टुडे यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि एक दो तीन साल के अंदर अंदर धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप करें? हाउ डू आई गो अबाउट इट? और शुड आई से वी बिगिन इट विद ट्रस्ट? बिकॉज तब तो आपकी स्ट्रांग फाउंडेशन होगी, नहीं तो फाउंडेशन डाउट की है। डाउट की फाउंडेशन पे तो वही इमारत वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि डाउट की फाउंडेशन पर खड़ी हुई जो अगले एक दो तीन साल भी बीते उसमें थॉट्स ऑफ ये ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ट्रस्ट इज ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स।
0: ट्रस्ट का मायने क्या है कि मैं आपको पोजेस कर लूंगी कि आप मेरे ही हैं? अगेन ट्रस्ट इज समथिंग हैज टू बी यू नो एक्चुअली डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं आप पे कंप्लीट विश्वास करती हूँ, क्या मैं आप पे एहसान कर रही हूँ? वन सेकेंड उसका पूरा एग्जाम पूरा मतलब क्या है कि मैं आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ?
1: दूसरे पर ट्रस्ट करके हम दूसरे पर एहसान नहीं करते, हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि जितना समय हम डाउट में रहते हैं अंदर डिस्टर्बेंस
0: पेन रहती है, बहुत पेन है,
1: एक इनस्टेबिलिटी कंटिन्यूस, मतलब अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। और जिस क्षण ट्रस्ट करना शुरू किया ऑल वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स ओवर, तो वो एहसान दूसरे पर किया या अपने ऊपर किया? अपने ऊपर किया कि सारे जिसको कहे चिंता, बोझ, एंग्जाइटी, इट्स ऑल ओवर, बिकॉज नाउ देयर इज नो डाउट। वी कैन डाउट ऑन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, कितनी चीजें हैं जिसमें हम डाउट करते हैं, और जब वो सारा हट जाता है तो सोचो अंदर क्या होगा। दैट इज पीस, दैट इज हैप्पीनेस, जहां अंदर एकदम स्थिरता आ जाएगी। तो ये किस पर एहसान किया? अपने पर एहसान किया। दूसरे ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, लेकिन जिस क्षण हमें लगा कि अब हम कर सकते हैं हमने करना शुरू कर दिया। आज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब कोई हमारे सामने कुछ कहता है या कुछ करता है तो हमारे मन में ये डाउट होता है कि क्या ये सोचते भी यही है। Why?
0: हाँ, अगेन यू नो, क्योंकि कहते वो कुछ रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर हमें नहीं मालूम कि, क्योंकि लगता ये है कि डिफरेंस होगा जो सोच रहे हैं और कहने में।
1: क्यों ऐसा लगता है कि दूसरे के अंदर
0: होगा? हम खुद ऐसे होते,
1: क्योंकि हमारे अंदर ऐसा है। सो सी, रिलेशनशिप इज माई कॉन्शियसनेस मैं आपकी इमेज। अब मेरी कॉन्शियसनेस की जो क्वालिटी होगी उसमें तो आपकी पिक्चर आकर बनेगी ना, मतलब मेरे पास कलर्स की क्वालिटी क्या है, दैट इज माय कॉन्शियसनेस। अब उन कलर्स से मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगी, तो जो क्वालिटी ऑफ कलर्स होंगे वो उस पिक्चर के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे बिल्कुल। अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ये इंटेग्रिटी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इफ माय थॉट्स वर्ड्स एक्शंस आर सेपरेट, तो मुझे क्या लगेगा कि बाकी लोग भी कैसे है? ऑटोमेटिकली मैं कैसे इसको बिलीव करूं, क्योंकि मेरे पास वो कलर्स ही नहीं, तो जो कलर मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूसरे को उस कलर में देख नहीं सकती हूँ। मेरे पास वही कलर है क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर सारा दिन में कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ, तो मेरे पास वही रंग है। अब वही रंग से मैं आपकी इमेज अपने कॉन्शियसनेस में बनाऊंगी, तो आपकी इमेज भी यही बनेगी कि आप भी सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। अगर आप कहते भी हैं कि नहीं मैं जो सोच रही हूँ वही बोल रही हूँ, आई डोंट हैव द कलर, आई डोंट हैव द कलर,
0: आई कांट रिलेट टू इट,
1: आई कांट रिलेट टू इट, आई डोंट हैव द कलर। इट्स लाइक सेइंग कि आई हैव रेड कलर, तो मैं आपकी पिक्चर रेड कलर से ही बनाऊ, आप बोलो नहीं आई एम ब्लू कलर, आई डोंट हैव ब्लू कलर,
0: आई डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लू कलर, गुड,
1: आई विल स्टिल पेंट योर पिक्चर विद रेड कलर एंड आई विल स्टिल होल्ड ऑन टू द थॉट, नहीं आप सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे। तो इट इज इंटेग्रिटी एट द वेरी रूट लेवल, और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातों में नहीं, लेकिन सारा दिन में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में। अब जब हम वो ट्रस्ट का कलर अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर देंगे, और वो कैसे होगा, जब मेडिटेशन से हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं। अभी तक हम जो सोचते हैं वो नहीं बोलते, कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं लोगों को खुश करना, कहीं ना कहीं किसी को इम्प्रेस करना, तो प्रिटेंशन क्यों थी अभी तक, क्योंकि हमने सोचा कि मैं कौन हूं, मैं एक शरीर हूँ, पोजिशन हूँ, स्टेटस हूँ, एक पर्सनालिटी जो मैंने क्रिएट की है, तो एक आउटर पर्सनालिटी है, और उस आउटर पर्सनालिटी को मुझे सारा दिन दूसरों को क्रिएट करके दिखाना पड़ता है। एंड अगेन इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि मुझे बार बार ये डिसइंटेग्रिटी से चलना पड़ता था, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर बेस्ड थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो लेट्स से मैं इस टाइम बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत उदास हूँ, तो आप सोचेंगे अरे आप भी उदास होते हैं, तो और आपका मेरे बारे में ऐसा सोचना मेरी सेल्फ एस्टीम को क्रैश कर देगा, अगर मेरी सेल्फ एस्टीम इस चीज पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एंड नॉर्मली आज दिन तक हमारी सेल्फ एस्टीम औरों के ओपिनियन पर बहुत ज्यादा बेस्ड थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को छुपा के रखना पड़ता था, और हमें वही चीजें बोलनी पड़ती थी जो औरों को अच्छी लगती है, क्योंकि हमें उन्हें खुश करना है। तो आई एम चीटिंग माई सेल्फ, तो एक्चुअली इफ यू सी सारा दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम चीटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक what I am thinking. Why? Because you might not like it. And if you don't like it, then you don't like me. And if you don't like me, then I don't like myself.
0: That's important.
1: So it's very deep. So sara din mein I'm going around impressing people, influencing people. And because of that, I just can't be myself. I can't be what I want to be. Spirituality ne hame apna sahi parichay diya कि मैं कौन हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिसके अंदर इतनी ब्यूटीफुल गुण हैं, शक्तियां हैं, वर्तमान समय कुछ एक कमजोरियां भी हैं, बट दैट्स ओके, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई डू नॉट वांट टू क्लेम टू से दैट आई एम परफेक्ट,
0: बट आई कैन ट्रांसफॉर्म ना, दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन,
1: आई एम वर्किंग ऑन दैट, बट टू वर्क ऑन दैट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, आई हैव टू एक्सेप्ट कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन आज दिन तक आई वॉन्टेड टू हाइड
0: फ्रॉम माई सेल्फ, यू नो,
1: कि वो सारी कमियों को छुपा के एक इमेज क्रिएट करना चाहते थे कि आई एम जस्ट फाइन द वे आई एम, तो देन आई कुडंट बी माई सेल्फ, आई कुडंट बी माई सेल्फ, तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू कीप ऑन चीटिंग माई सेल्फ, तो मेरा अपने पे ट्रस्ट, और जैसी मैं हूँ वैसे ही सब लोग हैं, वो मुझे 100%।
0: वो भी कई बार आप भूल जाते हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा वक्त आप खुद तो सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, हर बार आप अपने आप को याद दिला देते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच हो जाते हैं ये तो भूल जाते हैं, आपको वही मुझे आप ही दिखेंगी जो जिस रूप में आप हैं, आई विल फॉरगेट, ये अभी भी इस पे काम करना बाकी है।
1: या दैट्स ओके, बट यू नो सी, जब हम अपने अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं कि आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, कि मेरे अंदर ये गुण हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन ये कमजोरियां भी हैं, बट दैट्स फाइन, यू नो, सो दैट इज एक्सेप्टेंस, कि इट्स ओके, ये कमजोरियां हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इंटेग्रिटी, जब मेरे अंदर ये इंटेग्रिटी आ जाएगी, देन आई कैन एक्सेप्ट अदर पीपल ऑल्सो इन द सेम वे, कि इनके अंदर भी ये गुण है लेकिन ये थोड़ी कमजोरियां हैं, बट आई एक्सेप्ट देम विद बोथ द थिंग्स। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको मेरे सामने आने के बाद प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई एक्सेप्ट यू। हम प्रिटेंड किसके सामने करेंगे, जो हमें वो कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते।
0: तो इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता यही है, बिगिनिंग में तो देर इज अ प्रिटेंशन, लॉट ऑफ प्रिटेंशन, बट ग्रेजुअली, बिकॉज कब तक, क्योंकि आप 24 घंटे का साथ रहेगा।
1: अब उस रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा दिन प्रिटेंड करना
0: बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: आप ऑफिस थोड़ी देर प्रिटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कभी आप किसी कोलीग के साथ हैं, कभी, लेकिन जिसके साथ पूरी जीवन बितानी है, उसके सामने प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता, और तब जब कहीं वो प्रिटेंस गिर जाता, तो इट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन,
0: एंड देन द कंप्लेंट कम्स, इज लाइक आपका असली चेहरा अब दिखा।
1: ये एंड स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जब आपने कहा ना कि जो पहले से जानते थे एक दूसरे को और फिर उस संबंध में जुड़े, लेकिन वो जो पहले जानने वाला पीरियड था
0: वो डिफरेंट था ना, वो प्रिटेंशन वाला था, कि आप 2 घंटे मिल रहे हैं, 4 घंटे मिल रहे हैं, यू आर योर बेस्ट, That I have, that is actually, yes, that's understandable.
1: लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड जब आप ये एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर वीकनेसेस, तब दूसरे को आपके सामने प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा एंड तब वो जो सोच रहे हैं वो बोलेंगे। तो औरों को हमें प्रूफ नहीं करना, लाइक यू सेड ना, यू विल हैव टू विन माई ट्रस्ट, नहीं, आई हैव टू बिकम स्ट्रांग इनफ
0: टू ट्रस्ट यू। ट्रस्ट का रियल सेंस में मीनिंग क्या है, मैं आप पे क्या कैसे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं क्या आपसे उम्मीद कर रही हूँ, या क्या मैं आपकी, क्या विश्वास का बेसिक मतलब क्या?
1: जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं आ सकती है। एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन क्या मतलब हुआ, देन दैट मीन्स देयर इज अगेन एन एक्सपेक्टेशन,
0: यू चेंज, यू डू दिस फॉर मी, यू डू दैट फॉर मी,
1: तो आप हर टाइम कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होगा हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो ट्रस्ट मतलब मैंने एक इमेज बना ली कि आपको ऐसा होना है, जितने दिन तक आप इस इमेज के अनुसार चल रहे हैं, आई से आई ट्रस्ट यू, जिस दिन वो इमेज के कॉन्ट्रडिक्टरी आपने कोई कर्म कर दिया या कोई बोल दिया, तो हम कहेंगे मेरा विश्वास टूट गया। क्यों विश्वास टूट गया, क्योंकि वो इमेज टूट गई। तो विश्वास क्या है, कि आई ट्रस्ट यू, बेसिकली फॉर मी इट वुड बी, विश्वास वो है कि आई ट्रस्ट दैट यू आर फीलिंग द सेम थिंग वॉट यू आर सेइंग, दैट्स द डीपेस्ट, क्योंकि अगर आप उस लेवल पर उसको ले आएंगे तो बाकी सारी चीजें तो सारी आराम से उस पैरामीटर के अंदर फिट हो जाएंगे, लेकिन डीपेस्ट ये है कि छोटी से छोटी बात में आप वो ही कह रहे हैं
0: जो आप सोच रहे हैं,
1: जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। विश्वास तभी टूटेगा ना।
0: हाँ, यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, मैंने आपको जैसे है आप, जिस भी रूप में आप, वैसे स्वीकार लिया, और ये मैं ये मेरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं। आप एक तरह के थे जब मैं आपके साथ मिली, आपके साथ एक रिश्ता शुरू हुआ, आप सच में विश्वास रखते थे, सच में, एक जनरल बात में कर रही हूँ। जिंदगी चलती गई, आपको देखा मैंने, धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सच पे जो आपकी अडिक्टता, जिसको मैं बहुत प्रशंसा करती थी, आपको एक्सेप्ट कर रही थी या कर रहा था, आप बदल गए, जिंदगी ने बदला या जो भी हुआ, मैंने देखा कि आप
1: झूठ बोलना शुरू कर दिया,
0: आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया, तब भी मैं आपको एक्सेप्ट करती जाऊं, बुरा लगा मुझे, क्योंकि मैं उस आपकी जो वो गुण था उसको बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन तब भी मुझे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ, और यहाँ मुझे लगा कि मेरी ट्रस्ट ब्रेक हो गई।
1: नाउ आई वुड थिंक इन दिस, कि आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, ये आपकी गलती है या मेरी गलती है?
0: मेरे सामने नहीं बोल रहे, कहीं और बाकी व्यवहार में
1: नहीं, पहले यहाँ, सी द होल एंटायर रिलेशनशिप इज फर्स्ट द एनर्जी एक्सचेंज हियर बिटवीन टू पीपल, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तब होगी ज्यादा जब आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कहीं और बोल रहे हैं तो आई वुड प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि आप वो क्यों बोल रहे हैं, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट विद यू, लेकिन मेरे सामने जब आप बोलते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ योर एंड माई ट्रस्ट, यू नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ट्रस्ट विद द अदर पीपल, लेकिन हम कहते हैं मैंने आप पर पूरा विश्वास किया, मैंने हर चीज पर पूरा विश्वास किया, आपने झूठ बोला तो मेरा ट्रस्ट टूट गया। हम ये नहीं उस पर विचार करते कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलना क्यों पड़ा।
0: जब मैं कुछ ऐसा कर चुकी हूँ या किया जो आपको पसंद नहीं आया,
1: अगेन जब आपने कुछ ऐसा किया जो आपको पता है कि अगर आपने सच बताया तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड आई विल गिव आई विल नॉट लाइक इट और वट एवर, तो तब आपको झूठ बोलना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम किसकी थी? माई लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, मेरे अंदर एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं थी। इस ताकत की कमी होने के कारण आपको मेरे सामने झूठ बोलना पड़ा।
0: लेकिन
1: अब हम ये कह सकते हैं लेकिन आपने गलत किया, हाँ। आपने झूठ बोला, बट वी आर नॉट हियर टू लुक एट एवरीबडी एल्सेस फॉल्ट्स। यस, अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट वी कांट चेंज देम। वी आर इन एवरी इंटरेक्शन वी आर गोइंग टू सी मैंने क्या किया इसमें, बिकॉज मैं उनको नहीं चेंज कर सकती कि वो सच बोले, लेकिन मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दूं कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़े।
0: लेकिन रिश्तों में यही एक कहीं ये जो माइंडसेट चेंज होने की बात है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं। हर रिश्ते में वो नहीं दिखता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता, तो जहां से मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूं, ऐसे एक सिचुएशन में आपने एक तरह से बिहेव किया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वही सिचुएशन अगर चार साल बाद आई, आपने अलग तरह से बिहेव किया, अलग तरह से आपका बिहेवियर था, अब मैं किसको एक्सेप्ट करूं?

0: फीलिंग हर्ट, लेट से एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक ने दूसरे से झूठ बोला, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट टॉक इट आउट कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी. यू नो नॉर्मली क्या होता है, आपने मुझसे झूठ बोला, आई एम सो हर्ट कि मैं विथड्रॉ कर जाती हूं,
1: मैं बात ही नहीं करूंगी.
0: यू नो मैं इतना हर्ट हूं, अब मैं अपने दुख में घुलती रहती हूँ. मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, ऐसा किया क्यों, एंड आई डोंट लाइक यू.
1: एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अंदर तो ये दुख चलता रहेगा, ऊपर से आई क्रिएट अ फेस कि आई एम ओके. यू नो दैट्स अगेन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, कि ये भी कि मैं अंदर से तो उतनी ही परेशानी, और ये परेशानी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऊपर से आई क्रिएट अ फेस कि इट्स ओके.
0: या बट द थिंग इज कि जैसे ही सी व्हाट हैपेंस इज, हम हर्ट जब हो जाते हैं कि आई एम हर्ट राइट, एंड नाउ आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू हर्ट मी. सबसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम कि यू हर्ट मी,
1: हमेशा कोई और मुझे चोट देता है.
0: पहले तो उस बिलीफ सिस्टम को जब हम चेंज कर देते हैं कि यू कैन नॉट हर्ट मी, आपने जो किया सो किया, मैं हर्ट हो गई उससे, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं थी उस बात को स्वीकार करने की. तो उससे क्या होगा, मेरी आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी. अभी तक नेगेटिव एनर्जी क्यों जा रही है, यू हर्ट मी, आपने मुझे धोखा दिया. नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, आई एम हर्ट राइट नाउ, इट्स माई फॉल्ट, यू हैव डन व्हाट यू हैड टू डन, व्हाई एम आई हर्ट. तो पहले तो अपनी काउंसलिंग कि व्हाई एम आई हर्ट, वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू बी स्टेबल. दूसरे ने कुछ किया बट व्हाई एम आई गेटिंग अफेक्टेड. तो पहले अपनी काउंसलिंग करके अपने आप को स्ट्रांग बना ले, फिर हमारे अंदर वो ताकत होगी दूसरे की हेल्प करने की, कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट हैपेंड. बट आई एम एबल टू टॉक विद दैट कंपैशन ओनली व्हेन आई डोंट हेट यू. बट जब आप मेरे को झूठ बोलते हैं तो आई हेट यू एट दैट टाइम. तो हेट एंड कंपैशन, गुस्सा एंड लव,
1: इन फैक्ट कैनॉट कम टुगेदर. एंड मैंने आपको पहले ही कटघरे में रख के आप पे पूरा इल्जाम लगा के, आई हैव ऑलरेडी एक्चुअली लाइक यू नो आई हैव मेड यू अ क्रिमिनल ऑलरेडी.
0: तो फिर आपको मेरे से कंपैशन नहीं मिल सकती है उस हालत में. क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम्मेवार ठहरा दिया मेरे दर्द के लिए. जब मैं आपको अपने दर्द से अलग कर पाती हूँ कि आप अलग है, मेरा दर्द मेरी सेल्फ क्रिएशन है, तो पहले सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इट्स माई क्रिएशन सो आई हील इट. एंड जब मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ, हील कर लेती हूँ, तब मेरे अंदर वो ताकत आ जाती है कि आपके अंदर जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज दैट्स अ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप और क्या है कि आप किसी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, एज योर पार्टनर इन लाइफ आई शुड बी एबल टू हेल्प यू थ्रू दैट. लेकिन हम इतने अपने ही दर्द में इतने घुल जाते हैं और दूसरे पर इतना ब्लेम डाल देते हैं कि दूसरा किस दौर से गुजर रहा है
1: ये हम भूल ही जाते हैं कि हाँ दैट्स ट्रू. और गलती करने का जो स्कोप हर एक की जिंदगी में होता है,
0: गलती वो भी समझनी पड़ेगी इन द राइट पर्सपेक्टिव.
1: गलती वो गलत है भी या नहीं.
0: ये हमने उसको गलती माना, तो पहले तो उसको भी तो डिस्कस करके वो पर्सपेक्टिव राइट लाना पड़ेगा. लेकिन वो तभी हो जाता है व्हेन आई लव यू इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव डन.
1: दैट्स व्हाट वी से अनकंडीशनल लव, द वे यू सेड, द वे शिव बाबा.
0: एंड अनकंडीशनल लव इज वेरी इजी, ओनली एंड ओनली इफ आई अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड. अभी वो लव है लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे दर्द आ गया. मैंने ये सोचा आप मेरे दर्द का कारण है, तो मेरे प्यार की जगह गुस्सा आ जाता है. तो और गुस्सा जहां आया वहां प्यार नहीं है. बुद्ध
1: और नफरत सिक्के के दो पहलू हैं कहा जाता है कि नफरत ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है, ये भी बहुत बातें कही जाती हैं.
0: प्रेम मुझात्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, नफरत नहीं. नफरत एक संस्कार है जो बन चुका है, उसको तो हम हटा सकते हैं, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसमें प्रेम और नफरत दोनों नहीं है. बिकॉज आई लाइक ओनली दैट लव, सो लव इज माई ओरिजिनल नेचर एंड आई एम filled with it to be able to give it to everyone else.
1: Sister Shivani, aaj trust ko ek naye andaaz mein dekhne ki koshish ki. Ab vishwas ek aisi cheez thi jo hum dusron par karte the, lekin aaj ye baat phir saaf ho gayi ki main se hota hua hi har cheez jayegi, to wo kar kyun rahi hu apne liye. You know, I become very important. Bahut bahut dhanyawad is puri baat cheez ke liye. Om Shanti. कोई भी रिश्ता कहा जाता है कि उसकी नींव अगर मजबूत हो तो फिर वो इमारत या वो रिश्ता बहुत सुदृढ़ होता है. पति पत्नी के इस रिश्ते में हमने देखा कि हर बार हम कहते थे कि नींव विश्वास की है, लेकिन आज विश्वास डगमगा रहा है, तो वो किसी और के कारण नहीं.

बल्कि हमारे अपने ही कारण। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो रिश्तों को एक नया रूप दिया जा सकता है और विश्वास को दोबारा कायम किया जा सकता है। ये भी बात कि एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा नहीं हो सकता, जब मेरे ही हाथ में है तो मैं विश्वास दोबारा कर सकती हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09999934555, 09999934666, 08736666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्ते जो हमारी जिंदगी में रस लाते हैं, हमें जिंदगी जीने का नया अंदाज देते हैं और जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दोबारा आपसे होगी मुलाकात और कुछ खास रिश्तों के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: Sono
1: bella babra giovai mi palasana
0: belle belle belle belle belle belle che abate
2: very nice
1: te giodo anna di valisi di like e dasi belle belle shava shava
0: वेरी गुड इदा होना चाहिए इदा ही सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे नु वेरी गुड वेरी गुड थोड़ा दिन वधिया वधिया रवे अच्छा उन्हें वो सड़क देखते होने ना कि खाली है कि नहीं
2: exactly
0: वीरा वीरा पूरा इनटू है वो जॉब
1: डंपलिंग्स कुशी देखिया
0: वाह वाह
2: आई लव डंपलिंग्स कुशीज एस वेल यम यू नो यू फील लाइक चूइंग इट
0: अच्छा अगले कॉलर ने साडे नाल अनाहत
2: सस्रीकाल
3: आंटी जी ते अंकल जी
2: सस्रीकाल अनाहत जी की हाल चाल ने जी
3: वदिया तुसी सुनाओ ताड़ा की हाल है
2: मेरा हाल best. ना पुछो पुत पूरी दिन नंग जाना है
0: अच्छा माय गॉड
2: एक डेंटिस्ट ने मेरा मुंह सजाया पे आया है एक गिट्टे च यू नो नेल पॉलिश नहीं लगी हैगी गिट्टे च नेल पॉलिश नहीं लगी
0: अच्छा वाह
2: मेरी गल ना सुनियो
0: ना ही सुनो भाई मैं कंफ्यूज हो गया ना थोड़े चक्कर च यार आपा शो अगे भी बताना छोड़ो यार साडा हाल ना पुछो सानू साडे हाल च रहन दो अपना दसो भाई थोड़ा की हाल चाल
3: मेरी सुनो
2: सुनाओ
3: अज मैं तुहानू एक अज दा विचार सुनानी आ
0: लो जी लो
3: अरदास ते विश्वास दोनों नजर ता नहीं आंदे पर दोनों दे विच इन्नी ताकत है कि नामुमकिन नु भी मुमकिन बना सकदे हन इस दा मीनिंग है कि सानू हमेशा सरबत दे पल्ले लई अरदास करनी चाहिदी है ते परमात्मा ते भरोसा रखना चाहिदा है क्योंकि ओदे ओट नाल
0: लाल जी जो तुसी कॉल करना चाहो छेती छेती दोबारा कर लो मैं सॉरी पिक नहीं कर पाया रियली सॉरी माय ब्रदर रियली सॉरी अब तब तक मैसेज वाल चात मार लिया
2: हाउ कम कृष्ण लाल बसंत लाल द फोन चक पाया
0: माय गॉड ओ सड़ा लाल ना लाल कैंसिल हो गया ना ता करके ए पंगा पै जांदा मैथ मेरा ना शुरू तो ही थोड़ा इस तरह ही है कि ना ही हुंदा तां भी ठीक सी है
2: मैनूं लगदा थोड़ी लाल ना थोड़ी लगदी है
0: ओ नहीं यार क्यों ये पंगा पण मैं वैसे ही लगता कोई ना नवा बंदा लभ रहे ने अपने जोक्स वास्ते मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं रोज जो घर जाना मैं सैमी पहली बहुत अफसोस हों मैं अफसोस अपने लिए नहीं फील करना चाहता
2: फील प्रिविलेज के थोनू किन्ना प्यार मिलता
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब प्यार शायद बताने लई आउट ऑफ सिलेबस हो गया काम जी लाल जी नहीं आए पर जसोवाल जी आ गए ने सत श्री अकाल वीर जी
2: साढ़े पतले पतले भाई साहब
0: My God.
4: इन्हू
2: भी मेरे गलती कर ली पुछ के की हाल चाल फोन कटो फोन कटो छेती
0: ब्रदर सिंपल जस्ट डोंट टेक इंटरेस्ट इन इट एज सिंपल एज दैट
4: पाजी बैंक वाले केस तो काट लंदे
0: ये भी गल ठीक है भाई फिलोसफी दी इथे तक की हुंदी बस मार इस तो ऊपर नहीं हुंदी भाई
4: नहीं मैं नोनिया किसी ना ही नोनिया जी वाली टोन बोली थी मैं हाल ना पूछो
0: मैनू थोड़ी आवाज नहीं आ रही हेलो हेलो
4: कोई नहीं बाकिया नू आ रही है कृष्णा जी नू ना पुलिस वाले ने रोक लिया मोटरसाइकिल ते जांदे नू कहिंदे लिया भी कागज दिखा कृष्णा जी ने सारे कागज कढ के दिखाते कहिंदे अखे आरसी भी ठीक है पोल्यूशन सर्टिफिकेट ओ भी दिखाता ते सारा कुछ दिखाता ते पुलिस वाले नू कुछ लभिया नहीं कहिंदे कित्थों आ कित्थों रहे ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ
0: ਠੀਕ
4: ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਮੇਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਰ ਆ
0: ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸਰ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਚ ਨਾ ਵੈਸੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ
4: ਨੋਨੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਮੱਝ ਚ
0: ਟ੍ਰੈਜਡੀ
4: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਨੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੋਨੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੋਨੀਆ ਜੀ ਵੀ ਗਿਰੇ ਪਏ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲਾਲ ਜੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਨੋਨੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ
2: ਬਈ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਪ ਬੜਾ ਨਾ ਭਈਆ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਰੁਪਇਆ
0: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ
2: ਠੀਕ
0: ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਫੜੀ ਪੂਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਕੋਈ ਲੜ ਲੁੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਓ ਯਾਰ ਸੈਮੀ ਭਾਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ I am not liking it. Parminder Sekho ji, Sat Shri Akal page de ne. 144 ji, kende ne ji, SSA bhaji, aaj mere husband Pritpal Gill da birthday a. Please wish kar do ji. Bilkul ji, bilkul. Happy birthday.

0: are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji. Stay tuned.
2: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस.

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी।
2: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.
4: Aaja pyar ki hodi.
5: Deal bole to?
6: Heart heart.
7: Ama yaar sauda sauda.
6: Oho.
4: Dono deal kar
5: seal. Tight, tight, very tight.

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी। हाँ जी।
1: Mixing in the house.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हां जी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हां जी 1674 AM। थैंक यू।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: थोड़ी मोटी नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानु पूर्वी सोखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानु हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।